पुन भी चिला शादी खुनो भी कया ना सीधे आय ना दे आय दो लोग घर गनी नमो ताई बंग पान में ना खोई ना तुम दुना ले रे बदी मा पुमा ना पीरी बस सीधे आय ना दे आय दो भंगरू ही दना

0: उखरुल हायर सेकेंडरी स्कूल लेनो उखरुल हाई स्कूल वरमी उखरुल हाई स्कूल दा सुमाय तो ने हिंदी की वजह कौरी अम दरकार ओय हाय ता दे ये ना उखरुल वजह ओय बिचले पाछे तो कोई लगा मे थांखाय नि मनुंग दा चाहिए मगा था मगु मले यें खाली
1: मजागी आहन ब पोंगी वारी मजागी लाइरी थकलबी की टाइटल ओय वारी गसे उखरुल दे लेंगे इबी रे
0: प्रोजा आदा दे इबनी थकलबी सिम हार ब उखरुल लेंगे दा अंतो कोन फम दे यम नंगाय ब मफम नि मतम नि मदे इजिबनी
1: मदम दुगी ओजा उखुलगी फिबम दाइबेत निंगसिंग बियु ने हौजि कदि केनेरम मन
0: हजे याम कन केनेरे जही तरा कुन कुन था जदा आ को पंगना मदम दु अंतो उन वा खर पोने आयु सिदगी उखुले चटपसि औना बजा असिदा ऑफिस लेरे मि बसकी आयु छि पुंग तरुकी अदाय दगी तबदन हरे नुंगला औरम कनो द पुंग मंगा तरुक अदाय दिसुंग नुंग मचंगे नुंग थेलमा नुंग चंगे पोन ओनो वा लंबेन जो ओनो वा रमनी lambda do mudda shichu onna wa garba mal gari da phan tharga pham ga dong chali ni
1: missing ju lading gai happy ba
0: lading pha ta hap ja ni du ju onna wa tu ta siao ri ni de gi hajik leiba lambda chna te lambda ni pi why ngam mi ka ri ti ko nu ka ri am phajare ba si nu mada ani rak ka chen phone te am tam chen la me adingi ngasi sengi ba garden hai ayu
1: hai ayu mohala kadau ba
0: ngau ram thong do rim ni adim ti chen mu chade yadre ga chito i adi chum on thong wan sakra po ne
1: lam khang da ga ja gari yad ba ga di
0: ayad ba ga yau yam to ni yau khra po ni ahing le im ni
1: mi di ja phanaram ga ni matam du gi
0: matam ma ti ga yam na nungai ma ga ba ga mateng pang nai
1: hoi
0: adi ga yam matam da nung se chan ne le he ba tai adi gi iko ko lak matam da ibam e sida mangon jita de imung de chango ja hotel la na taga kan dai ba chang ja laga travel jo matam de sing missing matam de tam missing e ma se e smain ta we have the phaju ka ka pi na ko ta
1: ma tung phong gi de mo ge thui dok na da ba
0: a thui dok na on thok no nung si chan na dom la ya hai tai ha je je sa sa chat na ki na khang na dram na ni matam de on thok no wa na no ma sang ni hai ni
1: hoi hoi ba matam de gi kitang ning sing ni ngai se tam pak long gi jo ja gi thak la bi la rik ta wari macha ma nung ma hai ba wari macha se da nupa ma na cycle tong dra tai pun na koi ba thol ko dei sei sek pi hum theng na ru ba gi matam du gi ja chum wari da i sei da koi ju theng na jare ta re thambal cha ba chami na ba li kon sa na ba gi hau jik lei ri bi hum ji ga lai sa pa khang gi pun si ji bu ja matam du kari ke na gi
0: hau ji ki si di yam na janai khane re hai ba tai adi matam tu di yam na
1: पुक्सिल सुसिंग दबा
0: सेंग ना
1: मतम दुगिना पुक्सिल सेंग बा
0: पुक्सिल सेंगी दे ओइ दबो सि याम कन तंग दे अदिगी याम न चानन लाइबा चानन समिन बा चानन अदि असेंग असेंग मुसि हाइन दन कोले दरा पाखंग लै छाबी गोय बगी नपि न पा बगी फागी तंग न मखले मनि
1: अदि
0: नि आदन तो बनि मदुदा नम थाक गा अदिगी ओइ दबा तौदना मदिगी समाय तौदना नम जा नम थेक न बगी वाफम लैति याम न फ्रेंग ओइनि याम न अमगा मगा चानै अदि आवा अनासु यिंगनै आवा ने ए सुमान तदि मतेन गन पांगनै
1: होय
0: मतमति गिसि ओनतो को मखल गिनि लंबेन थोंग कन्न फब नति याम नो वाय लंबे थोंग नि याम फारे हजि सुगुन बाउ छ पद नो मसंग इमनि
1: मतम दु गिसि
0: मतम दु संग इमने बा आयु चक्र गन नो आ थोंग इमरा जति पुंगा मनि दे फम दे लरे आजि सोय बे यिंग खलि पुचन छिंगि होन ब कलि amagam mateng nam pang nabe chi haujik tongna di habi dina te de mata mata de yam na pujel chen na tongna yeb chei de mana thamjani ni
2: haujik ta bi kre ta sim pao ahan betang kak ta elangbam dinamani singa una de nawari shaba una bi kiba asem manglem basing thorom puthokpa laishram samarjit matangasida konjelnatum lanthoksaba loijere.

आहिबम इबिमलुंग देवी ने सकप नोट मतांगना रथ यात्रा ताबीरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबीरे से अथोकपम दोरे लुआंग खोंबा क्लेरियो ने।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: ಚರ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಜಗತ್ ಕೆ ನಾಥ್ ಕಹಿ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ರೂಪ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉನ್ಕೆ ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಔರ್ ಬಹನ್ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ಭವ್ಯ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೋಕರ್ ಶ್ರೀ ಮಂದಿರ್ ಸೆ ಲಗಭಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ್ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಿಚಾ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಮಾನ್ಯತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಮಂದಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಮೌಸೀ ಕಾ ಘರ್ ಹೈ, ಜಹಾಂ ತೀನೋ ದೇವತಾ 9 ದಿನೋ ತಕ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ವೆ ದೋಬಾರಾ ಮಂದಿರ್ ಲೌಟತೆ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಪಾಹಂಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ್ ಸೆ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಮೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಭಜನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಔರ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿ ರಿವಾಜೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ತೀನೋ ವಿಗ್ರಹೋ ಕೋ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಕರಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಲಾಖೋ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ರಸ್ಸಿಯೋ ಸೆ ರಥ ಖೀಚತೆ ಹೈ, ಜಿಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಔರ್ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಗರ ಭ್ರಮಣ ಕೋ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದರ್ಶನ್ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇನೆ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ.
1: ಲೀಲಾ ಚಲ್ವಾ ರೆ ತೂ ನಾ ಸಂಭಾಲೆ ತೋ ಹಮೇ ಕೌನ್ ಸಂಭಾಲೆ.
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है.
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे. पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे. फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार.
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है.
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा.
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया. रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं. दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा. इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी. आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा. मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे. भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा. मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया. एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है. 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी. अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं. आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 25,000 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha.

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओ, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओ, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोताओ, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओ, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
0: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
6: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
6: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
6: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
3: अच्छा
6: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
3: डॉक्टर नमिता
5: जी,
3: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं
5: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
6: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
5: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
6: जी,
5: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
4: अच्छा,
5: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
4: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
6: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
5: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
4: बिल्कुल,
5: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
6: जी,
5: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
4: बिल्कुल,
5: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
6: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
4: जी,
6: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
4: जी,
6: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
4: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
5: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
4: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
6: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
5: बिल्कुल,
6: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
6: जी,
5: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
4: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
5: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
6: जी
4: बिल्कुल,
6: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
4: जी,
6: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
6: जी,
5: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
4: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
6: जी,
4: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
2: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं। हम

0: आदि में होता है।
1: आदि में होता है।
2: गुरुजी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
0: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
2: जी
0: गोपाल
3: जी।
0: बेटा आगे तुम पढ़ा।
3: जी गुरुजी। पानी
1: पानी,
3: कुओं
1: कुओं,
3: नदियों
1: नदियों,
3: तालाबों
1: तालाबों
3: एवं झरनों से मिलता है।
1: एवं झरनों से मिलता है।
2: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
0: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
3: गंदे पानी के प्रयोग से,
1: गंदे पानी के प्रयोग से
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
1: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
2: गुरुजी।
0: हाँ बोलो।
2: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
0: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
3: जी,
0: चलो
3: जी,
0: ठीक है बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
3: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
3: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक
2: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश भाई। बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
3: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
3: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
3: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
8: दीदी।
9: बोलो मालती।
8: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
8: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
8: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये

0: है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
1: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते। नमस्ते बच्चों। नमस्ते
3: दीदी। ये
2: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
4: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने एक बगीचे से लाया है।
2: अच्छा
5: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
2: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
3: गुलाब।
2: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
1: दीदी मैं बताऊंगी।
2: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
3: गुलाब। गेंदा।
2: हाँ
3: चमेली। और
2: हाँ
3: चमेली।
2: चमेली।
3: सूरजमुखी।
2: सूरजमुखी, शाबाश।
0: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
2: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
0: जी।
2: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
0: जी जी।
2: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
0: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
2: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
0: बहुत अच्छे।
2: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
0: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
2: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
0: जी।
2: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
0: हल्के नीले रंग के?
2: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
0: अच्छा।
2: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
0: काहे की लिस्ट?
2: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं, और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
0: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
2: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
0: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें, और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में, और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर

बच्चे में अगले, उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: हौजी ताबी रे उमंग थौरम असी एनसीईआरटी की तेंबांग लुइनना संदोकचब थौरम नी आकाशवाणी इम्फाल ngasi इंगेंगी नि निपानबा सगोलसेन नुमित श्री श्री गोविंद जी की मसाईगोंदा श्री जगबोंधु की कांगसिंगबा थौरमगी मिन उब पाउदम असी नुंथिलपुंग अमदेगी अनिमखाई फाउबा संगाई चैनलदेगी रिले लौदुना कंगला अमदी संगाई चैनल अनिमकता संदोकदुन ताहनजगनी पाउदम बिगदबसिंग ख्वायराकपम बिस्वामित्र अमदी हाइकुजम देवेंद्र आकाशवाणी इम्फाल हौजी पुंफम पुदुना लाक्चरी तोंगान तोंगानबा मणिपुरी फिल्म सिंगदेगी लौखचबा इसैसिंग मथंग मथंग ओइना लैरांग ने लैसा तमलकपगुम निंगोल ओइबी आइगी थमुइसु लैसा तमलकले नुंसिबा मसा खंगलकले पामुबा माबु उनिन्दुना तलैरे खुदोलगे अहानबेला लौखचरीबा फिल्म डार्क फिल्म पुष्परानीगी नाइटों खोंजेलदा बिमोल फिबौना सैरेंगबा अमदी आफाउन सैरांगबे सै

ताकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पांच द्रवथमो भूमिकप्थोहन विदुना ताइबं कुमयोहन विरिवा अदुगुम्लवा विद्यागी महा महा सागर दुदा खुट पाय दुनलम जिनलम ताक पीरिवा तो लबाईगी हे गुरुदेव नंग चोरोंदा हन्न हन्न चंजरी। सर्वे भवन्तु सुखिनाः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवात् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जगत संसार सिदलेरिवा जीव पुन्न मक्की पुक्निंग वाखल हक्चांग लैता हन्बीदुना इंथर बथमोई लैता रब पुक्निंग गलोईनना पुक्निंग हक्चांग अनिमक तगत तगत तेकना अना येक लैतना इन तपना नुंशी शानना पानमिन नबा हिंगमिन नबा हाई बदू ओर सनु हाईना। असिगुंबा श्री श्री जगत बंधु इबंगो के मपा नाय द्रबलीला कुमसी कुम लिसिंगनी का कुंतरुक असिगी रथ जत्रा की थोरम असिगी होगदोक चरक पमी कुप्ता आकाशवाणी इम्फाल की थोमी रनिंग कमेंटरी थोगल तोजरीबा मित्र उब पाउदम थमजरीबा एकोई के माइक कई दगी याई फई पाउ पिजरी पुन्नमक की आई फनबगी दमकता जगत की मबू श्री श्री जगन्नाथ श्री श्री जगत बंधु जगत की मरुप इबोमा की सोरों थम्बांद कोति प्रणाम कच्चरी। कदाचित कालिंदी तत्त वीपी ना संगीत तरलो मुद्दा बिहारी नारी बदन कमल सद्द मधुपाह राम शंभु ब्रह्मा मरपत्ति गणेशार चित्त पारो जगन्नाथ स्वामी नयन पाथ गामी भवतु मे। पुक्निंग पेंदी बा करगुममि कुप्ता जगत की मपु श्री श्री जगन्नाथ न जमुना मपांगी निंचीन शिमसारवा हैकोल लैकोल दा सुमहत्लव नुंशीरव बांसी खोंजेल भक्त सिंह द पिनबीरी अदुगुमलव ब्रह्मा शिव लक्ष्मी गणेश न सिंह देवता सिंह निंग नफम ओय बीरीबा हे जगत की मरोप जगत क्यु कन बीरी वे बंगो थम्बाल बुंगम जरब मिश्ना अनीना मंगाल नाय हल्लब माई थोंग अदुना तो लवन नाय की मित मांगदा गान थोय बीरडे नशी की मिकुप असिदा मालेम गिलेन लिपालिबा अच्छत खाई पुनमकपु नुंशी मिजेंगे थौजाल की इरी खिक पियो को हे जगत की मपु हे ताइबंगी थोयरेन थोयर भगवन चोरों थंबाल दा संजर दुन तो लवन हन्न हन्न प्रणाम कच्चरी हे जगन्नाथ देवा हे दयानिधि। नुंशी जरबाई काय खुमने जरबा आकाशवाणी इम्फाल भू सांग लव सही लिसांग सिद्ना नुंशी बिरकलीबा इरम दम मसीगी ममल नाय द्रबा आकाशवाणी इम्फाल की लिसनर पुन्दमकपो श्री श्री गोविंद जी की मनी मंदिर की प्रांगों नसीदगी नसीगी रथ जत्रा की मित्र उब पाउदम थोगल की दमक सेम साजरीबा अहानबा रनिंग कमेंटर की यूनिट यूनिट असीगी इंचार्ज ओबीरीबा ऑफिसर सिंह मिट उब पाउदम खोंजेल ओइन थमजरीबा आई सामक खोराकपम विश्वामित्र सिंह लोइन नैगी मरुप हाइक्रूजम देवेंद्र सिंह अमदी इंजीनियरिंग यूनिट पुन्न मक्की महु छिंजरगा पुन्न मक्की चोरोन सोक न कुरुमजरी असिगुम लबा आकाशवाणी इम्फाल की थौगल सिबुता बीरीबा अहलमन लाई गुरुजोन ब्राह्मण वैष्णव इमाई बेली सिनेली से ख्वाई पुन्न मक्की मफमदा हौजिक थमजरीब मित न उब पाउदम से
श्री श्री गोविंद जी इबुंगो की मनी मंदिरी हेक मायोक ने ने लेरी बा मंदिर की नोंगपोक थंग बदा निंथी ने लेते इंग लबा इबुंगो की मांडोप मांडोप असिगी नोंगसुप थंग बा अवांग नोंगसुप थंग में सरुकता आकाशवाणी इंफाल की रनिंग कमेंटरी इसी यूनिट नंबर वन अहान्द यूनिट असिना थोगल तौजबनी थोगल फंगजबनी मयाम की मित न उब पाउदम से अखोइना लानथोक जबनी मियोय बगे पुंसी तंबंगम दम मपोकनी मतम ममदा आकाशवाणी इंफाल की ताबिरिब भिओर सिंगि लगता ngasi di panggal mayeng tabirak laba mamangay adungay da di kut na kong na leng ot na chat pangambiri ngay panggal na tik tik lao na kanbiri ngay da di Sri Sri Govinda ji ibungogi mandir gya koi basida parikrama chat pi duna kutta hiruk hirapay pi duna Sri Sri Jagannath mayambung ibungo Sri Sri Balabhadra amadi masalibe ma Sri Subhadra ahum masigi औजी औजी प्रांगोंदा गान छोई बिरिबा विग्रह सिंह सिगे ममांगदा हन्न हन्न खुरम बिदुना गमजब हैले कट पलेंग बि रकलम मनी अदुबो दाइबं खोंसेत इबंगो गे लीला अंगक पनी मतम गे मतुंग न होंग मलाई अदुगुम लबा मफम मसी यों न दिलेंग बि रकपंग अमद्रबा अदुगुम लबा कास्पानी फालगी ममल नाय द्रबा अहल नमन ब्राह्मण वैष्णव लाइ गुरुजन इमाइबेल इपाइपल ख्वाइ खिबिक की मफंदा मरुओइना अखन्नना नशी की मित नो उबा पाउदम मसी आकाशवाणी इम्फाल न कच्चबनी थमजबनी नशी थोगल फंजरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की इतिहास त यंखई के निपाल लक सुबा रथ जत्रा की रनिंग कमेंटरी नी मित नो उबा पाउदम नी आकाशवाणी इम्फाल ना 1963 दा सफोंग लगपा मधुगी मतुंग सही मंगागी मतुंग देगे होना 1968 दिसिंग मंगा चमापन हम पुनी पान देगी हाय रिबा रथ जत्रागी मित ना उबा पाउदम मशे आकाशवाणी इम्फाल ना क्वाई की थोगल की दमक कच्चे दोने लाक्षरी नशी की अशिगुम लबा यंखई निपान सुबा एडिशन नशे यांखे निपान सुबह मिट नौ व पाउदम के खुदोल से ख्वाई की मफंदा आकाशवाणी इम्फाल ना

0: सनातन औजो जिक्की मयाम हेन खंगरी श्री श्री गोविंद जी बोगी सनातन से ममान हृदय कोइना हनुमान ठाकुर जी महाबली हनुमान ठाकुर जी मंदिर रोमदगी लापा अदुगा निंखेम पुखरी मप्पाल रोमदगी लापा लंबी अदुगा हमर रोमदना मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी सिटी कन्वेंशन माइके यसोंदगी लापा लंबी माइके लंबी अहुम मसीगी लमलोंग फांगने भम ओइरिबा मसीदा हन बाई कोई गी सांगलेब पुवारी एसी इबुंगोगी मरु ओइबा सनतोंसी मसीन ओइरमु अदु बहुजो जिक्ति मरु ओइना ममांगलों द खजिक्तन हाइगत लगा वांखई लंबी मेन रोड असि यो फाटिंग ये लों द इबुंगोगी अचोवा सनतोंग मसुलेरे नैना हंगे चली बेसी मो गेदु उम सनतोंग दु नचदे मनिन थंबा अदुवा अवांग थंग सनतोंग मसिदगी हकथेन नना अखोई इबुंगोगी रोड असि अवांग पांग ना पैलेस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स असिगी अवांग इथंग थंबा थोंग गेट मेन गेट एमएसएफडीएस लेरिबा सिटी कन्वेंशन सेंटर लेरिबा मपा असिगी गेट अदु भावबा इबुंगोगी रोड असि लेंग दोगनी औजुगो जिगमे न उजरी ब पाउडम दी इबुंगोगी अदु गुमले ब विग्रह मसल लिबे म सुभद्रा मया मुगो बलभद्र अहुम मसीगी विग्रह से उजि दोलाय थक्तु नमो नमो बेंग थोरपा मदु गलोइन रे रोड की मखोंग सी ओरे रोड मखोंग यो की बगिनी मया न उजि एकोइ मिन उब पाउडम गी आ ऑडियो एम्बियंस ट्रैक नम दगी अंगबिरंबा बेम पार्टी की खुंजेल मखोल अदुगा लाओब खोंगंबा हरी धनी नुनी लंबदु कर खजिक नियम दगी बामा हौगिरंगनी अजी ओजिक सी रो थकले खत नबगी दमक त याम नमु ब्रह्म तान बम तसे नम अशि उबसिदा खुबम मम काई बे आवनते करी गुंबा मतन सोई बे आवनते मधुगी दमक त याम सेक्शन ना इंफाल इसकी पुलिस स्टेशन की पुलिस पर्सनल से मणिपुर पुलिस की ट्रैफिक पुलिस से लोइन तोंगान तोंगान बा लनाई संस्थान सिंह ना वॉलंटियर तो भी दुना लाइव भक्त को बच्चों सिंह सिद्ध काय बात कोई बात तो थोकते ना बा शोई बात तो थोकते ना बा दुगल लोइन ना इबुंगो की थोकल लसी दसु काय फदर बा शोई फदर बा थोकल ओई बना पुन्न मकसिन यान सेक्शन ना सेन दन होजी होजी गसी इबुंगोगी मया मुंग इबुंगोगी अमदि मसल लिबे मगी विग्रह हुमसी रोत थक तले खत न बता ओ हौजी रोत थक तले खत पो होरे हौजी हौजी लेन खत पो होरे अदो नमसिन रोत मथक सि दले खल ब मतुंग दा कोइना लंबी दा लेंग दो इबनि न रोत मथक ता दुने चेत ना कोई करिगुंबा कोई निचिन न पन बदा नुमाई जते अशोय गा बम तो थोकता न भाई नो इन हाई जगे कोई रोत थकता की होरे सिंग बा मी मयाम की भक्त मयाम की अदु गुंबा अंगक को येंग दिरो मजिकता भी रसी मयाम पुने मुने फंग भी रिबा धनी है से रोत थकता ले खटलो इन बम गुंबा भक्त वैष्णव सिंह मणिपुर स्टेट बेल पार्टी अदुगा श्री श्री गोविंद जी की सना पलाग लोइनन जय जगन्नाथ है वो पलाग लोइनन जय जय श्री जगन्नाथ आरती करे आए दिन इबुंगोगी आरती थोगल तो जरी अशिगुन्ना आरती थोगल नसी महा महा भाप याम नुशिरवा अदुगुंबा भाप अमा सिंह सिंह लगा तौरी बाद गुंबा आरती नी अदु वही श्री श्री जगन्नाथ ने इंद्र जी महाराज हान हान ईश्वर ओइना फौरखिबा आबिर्भूत तरखिबा मपम महावेदी सिंह लेबा गुंदिचा मन दई बुपुदन चतलो अशुल तकपीखिबा इब्नो रिया थंगो जो निको बसदन सिंह जदा बनम जते एको गिदी मणिपुर इरम दमसिगी
1: मेन चीज अलावा आर्ट एंड कल्चर के कॉम्प्लेक्स कला विद्या की ओर संस्थान तोलान तोलान में यूनिट मनी प्रोग्राम एन की नई दिवसीय उम्र संस्थान सीगी और अपना मपुंग फार में मपुंग सीगी इबुलों के वान पुंग से थोड़ा सी लगी हाउजिक सी रोत थक तले खट पिरम तुंडा प्रजा अग्र कच्चर बम तुंडा आरती कच्चरी लांगजरी हाउन भी थोरम कयाम कुप मसोई पदन मसीग तुंडा गुंडी चा मंदिर डलियन बगी भात इबुलों से हाउजिक हाउजिक अवान थंबा एनएसएफ देश ले रिबा मेन गेट असी होना इबुलों लेंगे दोरी बनी अदुगो लेंगे दोरी मतुंडा अमुक खन्न ममाए ले दिना इबुलों लापी के दोरी बनी असी उन नादुवाई की गुंडी चा मंदिर डलियन हिबर नबज चा अदुगो भाव रोस्ता दो सिंसिल लगा इखोई ना असी उन्दा कच्चे रिबा इंगेंगी निनी पांडा पंखलकु निनी पांडा निमित्त पंथोक चलिबा रोच्चे जत्ता मसीगी अतोपमनी नमना हुजित सोंगत सखिबा नर जत्ता है न सुखल नहीं नंदी घोष जत्ता है न सुखल नहीं पतित पाव न जत्ता नत्र का महाबेदी उत्सव महाबेदी सिंह लेब मफम दद इबों न लेंगबी बगे उत्सव फायदना असुम न खने हाउसिक मयाम पुनमक मांग तारिबा रोज चिंगद न थौरी से थोड़ी है जो नहीं ये ली योट की मरी नहीं थोड़ी ना का सिंगल अमन थे योट की असुम लगा मरी ये सी अमुक तक सोच पाई बने तब पाई भ्रम लेते ये ली ऐसे पाई भ्रम लेते मुन्नरी पाई भ्रम मुन्नरी खन्नरी अलग पाई भ्रम होगे विलानी पिक लगा गांव सिंह सुचेन से लई मपाओ इबा मपाओ इबा हल्ल में पुदी रही बसिंग ना अलांग सिंह सिबु रोड की सकाम नाक नक तमे बकन्ना सेनबीरी वो ना इबुलो रिजोर्ट ली ये सी पाए रे तुम्हें हुजिक इबो गुंडी चा मंदिर तन्नले रखले श्री श्री जगत बंधु मयाम बंग इबो बलभद्रा में चली बे में सुभद्रा गलो ना नीति जरबा अधुन लबा महा महा रस्य दिने एको ने उजरी बा चुप चली बा इन से ने चाटे भुंपनी तोई मई दिन उन सिंह थन खोंबा राजो श्री भागत चंद्र सना हक तक तगी इरा पुजा हुरक लबा श्री श्री जगन्नाथ इबलोगी अदुन लबे इबलोगी थौजाल दगी इन से न चन पान कुन छा नि थोगी इन इन गिनि पान दे रथ जत्रा नि इन इन थौ सिंगले नोंग्रेन खोमा महाराज गंभीर सिंह सना हक तक तगी मणिपुर दा कांग सिंह भाव रखी बनी आय न निपुण तिंग ने यानरी नसी फाव था जनरी करिगुम खुदों साद बले बाकी इसी निशाव अनायक खुदों साद बले बनतन लेतन कांग सी हाय बचही इस दिगा होड़ बचिंग अपना कुंसी सही लिसिंग ने कुंतरुक असी फाव पार गदी नसी मनी मंदिर डगी सिंह थोरक भी बा रोट असे रोट जत्रा असी सामग मरफुदरा मरी रख सूबा रथ जत्रानी हाइना अखंग ही सिंह ना सुमन थंबीरी औजिक आकाशवाणी इम्फाल की महाराज भोजचंद्र कॉलेज की ममांग दल यूनिट एसी की ममांग दा भक्त वैष्णव सिंह श्री श्री गोविंद जी की सेना पाला मणिपुर स्टेट बैंड पार्टी अदुगो माइक कई मणिपुर के माइक कई पुम्न मक्त की लाखरबा पाखरबा लंबी नी उन्दोग न पाक न हंदक न उन्हें सेम अबा सिमेंटेड लंबी यमो ओयर अब से मसी नी चटपन लेते रहे हुजिक अकोई न हुजिक पिजर रिवर हमें रनिंग कम इन तरीके सी की ममांग द करी थोई बगे हाई बपाओ बा अकोई उजद रहे और इताओ यंत्र लेख खट सके को उद रहे अधुने लेख खट चरी हुजिक लेख खट लगा अकोई न उजरी बसी अंगक पद्रिश्य नी मैं आम द मित न उबा पाओ दम पिजरी तमगद बने यामी मतम न तेली अमुक्त पुन हाई बसु याजदे अदुन अवाब की मसगम होजरी कोराक पम विश्वामित्र मदेगी मरुप देवेंद्र आगी मरुप देवेंद्र ने अमुक मयाम की थोगल मते कमा मिंदो हुब पाउदम थंबिगने
2: थागे चरी आगी मरुप कोराक पम विश्वामित्र नसी की सेंगलब इंगेन की निनी पानबा श्री जगन्नाथ की रथ जत्रा की सेंगलब नुमित असिदा नहा की ममांग दा इखोइना श्री श्री गोविंद जी की मनी मंदिर दगी मूर्ति विग्रह अहम मसीना लेंथोखिदुना निंथीना लैतेंगलाबा फुट निफुग तरुक मखाय वांगबा कांग असिगी सिंहासनद लेंखलाबा मतुंगदा नसी कांग असे लमदम मसीगी माइके पुमनमक्तगी लेंबिरकलीबा भक्त वैष्णव सिंहना कांग असे चिंगननबगीदमकता सेम साबा पुमलोय लोयरे मणिपुरगी स्टेट बेन पार्टी एम ओयरीबा मणिपुर राइफल्स की निंथी जरबा बेन पार्टी अदुगा

श्री श्री गोविंद जी की संकीर्तन पाला अमदी की थांगता की महिरोई सिंह अदुगा नुपा मचा नुपी मचा मयामा अदुगा पुजारी भक्त वैष्णव कयाना की रोड असी की मांग दा रोड असीबु चिंगनबीदम साधुना होजेगी मी नौब पौदमजरी मांग मक्ता मणिपुर राइफल्स की बैंड पार्टी की रनिंग कमेंट्री बूथ मी नौब पौदम लाथोक्तुना चतखरे तपना तपना रोड असी पौदमजरी रोड खामलीब मफम रोड असी होजिक चिंगब होखरे ओंथोकना निंथीजख्रब फुट निफुग तरुक मखाई वांगब रोड असे मणिपुर की माइकी पुनमुक्तगी लेंगबिरगलीब भक्त वैष्णव सिंहना रोड की थौरी योदी असी पाइदुना चिंगब होरगले रोड असी तपना तपना रोड खामलंब मफम महाराज बुद्धचंद्र कॉलेज की अहानब मेन गेट तुदगी हौरदुना अवांग पांगना की मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की गेट श्री श्री गोविंद जी की होजंग संगफम गेट अदु तमना लेंगदौरीबनी मरक्ता की है लै अदुगा उहै वहै कचनबगी दमकता मरक्ता बर्ती सेवा फंगजनबगी दमकता मफम अनि अहुम दसु की ngasi की निंथिजरबा रोड असे जगबंधु की रोड असे खामदुना की है लै कचगदौरीब बर्ती सेवा फंगजगदौरीब सिंह अदुगी दमकतासु इबुंगो न वकपीगनी अदुना यामना निंथीजरबा नोंग चिंगी फिवम हाइरुरगेसु नुंगसा सादे हाइबदी अयुक्त नुंगसा सारंबदो होजिकती नुंगसा सि लैचिन खंजिनखिदुना लेंगबिरगलीब भक्त वैष्णव सिंहदा यामना तैंग तैंग नुंगाइरबा अदुगुंब नुमित अमा पीबीडी मसिमक श्री श्री जगबंधुगी थौजाल मिपुम खुदिमक्त पीबीरबनी थोयदोक हेंदोकना मणिपुरदा अखोगी लेंगबिरगलीब मियाम असिदगी अखोइना खंगजबदी मिपुम खुदिमक अखोगी ईश्वर की प्रेम भक्ति रस असी पामजै शांति पामजै हाइबसिनी अदुना ngasi श्री श्री जगबंधुगी कांग चिंगब थौरम असिना लमदम असिदा इंग तप्पा हेन्ना मरा तप्पा मिपुम खुदिमक की नुक्सिनबा अदुगुंब चौखटपदो सोइदना पुबिरकनी हाइबगी अखोइना पौदमजरीब असिगी हेक मांगदा ngasi श्री श्री जगन्नाथ की निंथी नलेतेंगलब कांग असे पौदमजरीब असिगी हेक मांगदा औचिक मिकुप खरगी ओइना खामली मसी अखोगी रोड की चिंगबिरीब ओइ अमदी येट सिदैसदा चिंगबिरीब मिया मसीना रोड की चलिब असिगी मायोंदो खजिक हेक ओनारक मतमदा मदुगी सिंदोक सिंजिनगी मणिपुर पुलिस की अमदी मियोय सिंगा लोइनना मसी सेमदोक सेमजिनगी मतम खर लब ओइगनी अदुना ngasi asigumlaba chinglemlaba manipur ge khwaide gi chauba hindu sampradaya gi kumhai sing gi marakta gi ama oireba ratha jatra kang chingba kumhai ase masi asoi angam thoktena bagi damakta lenga ki maikei de gi su akanba cheksil thauranga loinana masi yamna fajana nga pi sen biduna asoi ba amata lehende ngasai ayu anganba de gi hauna ngasi kang chinga doreba onthokna ningthi jana akoi gi sem saraba concrete स्लेब हईरबागुब लंबी असी चंथोक चंजिन गारी चंथोक चंजिन याहनखिद्रब रोड चिंब लेंगबिरगलीब मियाम असी खुदोंग चाब अमुकसु हेन हेले अदुना मियामना जोय धनी गा लोइनना एखोइना हौजिक उजबदा एखोइना रनिंग कमेंट्री पीजरीब असी हेक ममांगदा मणिपुर की राज्यपाल अजय कुमार भल्ला श्री श्री जगन्नाथ की दर्शन फंजबग लोइनना खुरुमजरी खुरुमजब अखोइना उजरी महा की लोइन भीसु राज्यपाल की लोइन भीसु रोड असी मांगदा लाइ खुरुमब उजरी अदुगा यामना नुंगाइरिबना मथकतगी अखोइगी ब्राह्मण सिंहना है लै लंथरकपदो अखोइगी राज्यपाल मसामकना ओखिबगी अखोइगी सक्तमदो अखोइना उजै मसीमक यामना नुंगाइब अमनी मणिपुर की अदुगा अखोइगी श्री श्री गोविंद जी की असिगुंब यामना निंथीजना सेम साबिरब नुमित असिगी थौरम असिदा ngasi राज्यपाल लेंगबिरकप असिना अमुकसु हेना नुमित असिगी मगुन हाकली लोइना लोइनना मणिपुर की अखोइगी असेंबली की स्पीकर ओइबिरिब श्री थोकचोम सत्यव्रत

0: पालगिसु सखंग बिरबा आर्टिस्ट बी जयंत कुमार शर्मा असिन चिंगबा इकाई खुम नजरीब गुरुदेव सिंह असिना असिगुम मिटन उबा पाउदम मसिबु मसिगि फमबाक असिबु सेमबिरमदुना फाउंडेशन असिबु थोनबिरमदुना ngasi phawba ngasi gi mirol gi akashwani imphal gi naha ujeriba staff official sing engineering team aduga artist sing na ashigum thogal si miyamda kachaba thogal to bo phangjabani ondona nung sikhrabani matamama da khoina ujerami 1972 da put humbudara gani thoi wangami road ase ekhoina sri sri govindaji gi temple board ki official singa contact to budai khoina phangjaba report hariba ashigum ba road ase mathangda phut humphu humdoi da muk nemthari matamgi matungina aduga ngasi di phut niputaruk makai wangba road ase khoina mangda uzeri masi ekhoina ngasi ibungogi ashigumba nungsiraba pukding huna sumhatlaba thoram ase pangthok seribasi mamangda su khoina hangachakiba ashigum mapam se maha maha shanti gi shanti purna oireba mapam mani mapam asida sri sri govinda ji gi mani mandir leibire khajikta mamang nom da chalaga ning tem pukhri mapal da lining thau pam hai basana hak tak ki garib niwas medingu garib niwas sana hak tak ta nirpon to biramba ram ji prabhu gi mandir leibire pukhri achoba ning tem pukhri adudagi amuk complex asida sangsel lakpada kala vidya gi tamjana pham oiriba lamdam asi gi artist singbu hanbalai tena pungin thogat piriba akashwani imphal gi complex leibire adugi tungda art and culture gi art and culture department ki art and culture department ki office adugi mathangda akhoina ujari bisi rajarshi bhaiga chandra 1762 da manipur gi rasinga sendelengsin birambining thau adugumba maharas ki creator designer ining thau adugi ming da kachaba bhagachandra open air theater kala vidya gi mapam amuksu arts gallery ibo em sumang nila sanglen aduga government music college dance college Manipur State Film Development Society, City Convention Center, Hoop the Akoina Yang Jabama Tamda Angak Pakala Bidyagi, Adugumba Mapam Mamadani, Akoina Masi, Togal Pangjariba, Asiumba Ibungogi, Tobak Toramasi, Pangtok Livis. Object, Minoba Pogdamasi Amok, Akoi Aigimarop, Devendra Gimapam the question as a gay road, I say, Hauzi Ozik, Awang Tangbo Hosangasi. Awang thangbo hoseng asi yau ki gadore Akashwani Imphal gi gate asi yokselakpa matamni mapam asida mayamna hojik hojik hairu okpiri ibungo gi darshan phangjari agi marup Devendra gi mapam dagi makha tabami no uba paudam phangbi gani
1: thagachari marup Biswamitra Manipur da Kangchingba Maihoron dagi hauna ihan hanba aikoi gi Sri Jagannath ki murti adu Maidingu charai rongba sana hak tak ta ing lising ambaga chatruk marhurda tarai tagi na lising ambaga chatre supna mapan jagabondhu gi asigumba murti bigraha se manipur yoroki mathang mathang oina ngasi dagi na chaurang na chahi chani yangkhai mukki mamang da ihan hanba ratha jatra hairagadi Maharaj Bhagya Chandra gi sana hak tak ta miyam na ining thok chinglen nongdren khomba haina su khangna ba si gi sana hak tak english sing amaga chatret marfu si da ihan hanba oina ratha jatra si pangthoki haibagi ekoina record phangjai masi gi matung da miyam hupna matam madu da di sana konung gi miyoi sing na kang chingbagi thoram pangthok lamba du english sing amaga chani pan kunthra ni thoi koi gi Maharaj Gambhir Singh gi sana hak takta miyam yauna mipum ting na saruk yaduna koi gi kang chingba gi thorum si pangthorei matam adu degi hauna ngasi phawbada leptena tangai fadaba laibaki ising ichao awa ana tarakpa matam da chahi ama ani lepnatna leptena kang chingba gi thorum se pangthoktona lakli aduna kang chingba thorum si ngasi degi hauraga kanglen phawba numit mapani chupna pangthokadabani kanglen si purna jatra hairaga su khangnare masigi marak asina numit khudingi ekoygi lekai lekai khungang khungang khuding makta miyamna choidep chongba hairaga su khangnaba jayadevana iramba dasa avatar gi maramda bhagavan sri sri krishna gi magun saithaba isai numidang wairamda mantop khudingda shaktuna madugi thogal loirba matungda miyamna khisri gi ekoygi seva phangbagi adusu yauri aduna ngasigi thorombasi puri da pangthokliba thorum adugi masak adu manipur da su pangthoklibani aduga manipur gi top top masak amana puri da di asigumba rot asi jagabondhu gi jagannath ki rot ama mayambung ibungo balabhadra gi rot ama machalibe ma subhadra gi rot ama tongan tongan ba rot ahum da makoina ai khoi gi jagannath khetra da gi na khoi gi ma ki gundicha mandir phawasi rot ahum asi singadori bani chatkadori bani aduga manipur dana akoi gi bigraha ahu murti ahu mase rot amakhaktang gi mathak ta punna singhason da famin aduna mayai thangbada machalibe ma subhadra leiraga aduga yet ithang thangbadana maya mungi bungo balabhadra aduga oi ithang thangbadana akoi gi sri jagannath ki bigraha ahu masina singhason da lengchin duna nasi gi akoi gi ningthi jena leiteng laba put nifu taruk makhai wangba rot ase masi chingbagi thorum ase pangthokpani aduna ngasigi rathajatra gi thorum ase sana kunung sri sri gobinda ji gi sida pangthokliba asigi matungda chanarakpa oina lekai lekai khungang khungang da amuk kangchingbagi thorum do pangthok nei aduga iskon da su kangchingbagi thorum adumak pangthu e adubu chanabi ama oina sana akoi gi ningthorol kya gi haktaktagi akoi gi kangchingbagi thorum ase di sri sri gobinda ji gi sina ihan hanbo ina pangthok laga te lekai lekai singdo ina pangthok pagi chanabi ama lakche aduna makha ta ba paudam gi damak tai gi maro khairak pam biswamitra da khusi najare
0: thagachari maro haujik ekoina ujariba mit ki mang da ujariba punama kasi yum yum da kasbani imphal gi listener singna pukning changna nung sina tabiri ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯗ ꯁꯣꯟꯖꯕꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯔꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯄꯥꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯡꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯈꯣꯝꯖꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯆꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯣꯠꯇ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯖꯒꯠꯕꯣꯟꯙꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯎꯖꯩ ꯖꯒꯅꯥꯊꯅꯤ ꯖꯒꯠꯀꯤ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯖꯒꯠꯕꯣꯟꯙꯨꯅꯤ ꯖꯒꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤ ꯆꯣꯔꯣꯟ ꯁꯣꯛꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯁꯝꯄ꯭ꯔꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯚꯒꯕꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯏꯕꯣꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯆꯣꯔꯣꯟ ꯁꯣꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤ ꯔꯣꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯣꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯆꯣꯔꯣꯟ ꯁꯣꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯖꯒꯕꯣꯟꯙꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯍꯥꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯤꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯚꯛꯇ ꯕꯩꯁꯅꯣꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯊ ꯖꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤ महा महा मेला फेस्टिवल इबुंगोगी चोरोंदगी निज होउरी मयाम इबुंग बलभद्र श्री श्री जगत बोंधु मचल बेमे सुभद्राना सोयदनमकी थौजालगी खिकपीरमगनी मणिपुर कौबैरम नमसिदा इंब सिखपा नुंसी सानबा शांति लैबा अमग अमग वखल लैताना ताथोक तासिन तौनदुना अरै लैता हंगनदुना मतियंग पांगनदुना हिंगमिनबा अदुंगैगी पुंसी अदो अमुक खन्न मणिपुर हंजिल हनबियु हाइने इबुंगोगी चोरोन सोकना आइखोइना खुरुमजरी इबुंगोगी मफमदगी कुमसी कुमगी ओइना निज हौरी रथरुदो गसन पाथी मिलता बुद्धे बपतताट स्तति प्रसूर भावम प्रतिद मुदपा करती सादाय दया छिन्द निबंधो शुक्ला जगत्तम सिंधु सताया जगन्नाथ स्वामी नयन पाथ गामी भवतु मे हौजे ताबीरीब खुदिंगमकना आकाशवाणी इम्फालगी स्टूडियो रोमदा माई ओनसिन बिरसी
2: आकाशवाणी इम्फाल ngasi इम्फाल गी पैलेस कंपाउंड लैबा श्री श्री गोविंदजी मनी मंदिर गी मसाइगोंद पांगथोकलीबा कांग सिंगबा थौरमगी मिटनो उब पाउदम ताबिरे पाउदम बिखिबा सिंग ख्वैराकपम बिस्वामित्र अमदि हैक्रुजम देवेंद्र प्रोग्राम प्रोडक्शन गी ओबी टीम द लैबिखिबा प्रोग्राम ऑफिशियल सिंग दी लाइश्रम समरजीत माइबम इशाकांत ख्वैराकपम सर्बजीत अमदि सगोसेम रोमा ओबी टीम द लैबिखिबा इंजीनियर सिंग निंथौजम कुनन इरोम बिस्वजीत अमदि मणिकुमार सुनर लोइनना खोंबानताबम सुरेश कुमार इरोम जेमसन देवजन पोसंगबम अमदि थांगजम हेनबा कंट्रोल रूम गी इंजीनियर टीम द लैबिखिबा सिंग ngangum joychandra लाइश्रम शरद अमदि लाइश्रम रोसिता अदोम थौरम ताबिरिबा असि आकाशवाणी इम्फाल गी संगाई चैनल दगिनी
3: थौरम संदोक्तुना ताहंजरीब असि आकाशवाणी इम्फाल गी कंगला चैनल दगिनी हौजिक ताबिरसि लाइसोल इसै मथंग मथंग ओइना खुदोल गी अहानबिदा ताबिरसि इरोम लोकेश्वरी देवी गी खोंजेलदा बिरियन हैथंबना सैरेंबा लाइसोल इसै अमा

0: ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:15 ꯆꯠꯂꯦ. ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣ ꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में PV सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त GDP लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
4: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
4: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए।

0: और वीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि वीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब ₹15.50 प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर ₹2.50 प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर। आरंभ होता है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम।

फज भाई, महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन की हर राह को आसान बना दे। रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। तो फज भाई, आज है गुरुवार और आज आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं कभी अजनबी थे फिल्म से ये गीत।

इस मधुर गीत में आवाज़ दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार है रविंद्र पीपत, संगीतकार है विजय सिंह। तो सुनते हैं कभी अजनबी थे फिल्म से ये गीत।

फुज भाई अब सुनते हैं आक्रमण फिल्म का ये लोकप्रिय रोमानी गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस प्यारे से गाने को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और ये फिल्म

फौजी भाई, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कांगड़ा चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं 1975 की क्लासिक बॉलीवुड फिल्म प्रेम कहानी का ये टाइटल ट्रैक है। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। ये सदाबहार रोमांटिक गीत अपने ज़माने की एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट थी। इस गीत में आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लता।

फौज भाई, अभी आपने सुना नसीब फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब सुनते हैं लता मंगेशकर की ही आवाज़ में 10 नंबरी फिल्म से ये गीत। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फुजवा इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

फौजकी थौरम ताबीरे थौरम संदोक्तुना तहानजरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगिनी हौजिक संदोक्चरी सिंगलोन की सैरोल सैरोल के अहम ताबीरसी लाल थांगलुरा अमदी महाके कांगबुना सकपा मिजो मतमिसई।

आकाशवाणी इंफाल जो दिल्ली छो अदाय से है रदाय दाकुरे पुमाई वी शो सो ताजु सोलाय कपिजु हाई मीडियम वेव मीटर कैसे रदाय पॉइंट अली अल्या किलो हर्ट्स का चार

अच्छा हाँ ही नहीं हुए रे कई से वाजो वे को कई जो लाए मशो ही नहीं हूँ जो ते थे ही जदो मैं वे लो मैं से उन्हें जब बात दोपे खाई जीजो लो रापे जो ते थे से दोनों दोपे जो लो तो हाय शो शो कई जो लो लाए आकाशवाणी इंफाल जो वे को है हालो नरो एनजी ने फूप लाए मणिपुर चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद सिंह न्यू जो सेक्रेटरी थी न्यू मोरे वे कम्युनिटी लीडर्स ते हाई मणिपुर मुस्लिम काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव तमिल संगम अलिया गोरखा समाज दौलुजुवा ने असाजुची दो है पुए पिता दाका शुजुची ते हाई मत्सुजु डेवलपमेंट इश्यूज मत्सुसो आ हेल्थ केयर सर्विसेस खोची पिलोविजु पब्लिक में सोन्यू व्याजु अलिया स्टाफ स्ट्रेंट सो वही पिजु ए इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ही न्यू मत्सुसो आ फलो है पिन्यू डेलीगेशन में तो ही पिता वही व्यादो ने चोआ वा सो प्लको पिलाई जा पाए यूनियन कैबिनेट न्यू वाराणसी उत्तर प्रदेश ही इलिवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट्स अहाय शना क्रोड थे कैंगो लाजु वी म्यू हाई ए आउटी पुरे जा पाए कैबिनेट कमिटी न्यू कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर सी सी ई ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सठेपो आ प्रोजेक्ट्स है तो है ए आउ टीपी जो है वाराणसी ही रोड कनेक्टिविटी सो वी पूरे ए डिवाद तो क्या क्या जो सो हालो रे अल्ला ट्रैवल टाइम सो चीलो रे दोनों इटा पाए प्रोजेक्ट है ना ही किलोमीटर रदाई चुर वी नेशनल हाईवे 19 अल्ला वाराणसी रिंग रोड ऑन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कोलो ही सिक्स लैन ग्रीनफील्ड इलिवेटेड कॉरिडोर है लोवे दुहना है शनाक्रोर ठीक की दाई कई दाई म्यूसोलाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव न्यू दिल्ली ही न्यू मीडिया में ही क्यूको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है किलोमीटर का रदाइस शुजु सिक्स लेन अल्या फोर लेन इलिवेटेड कॉरिडोर वरुणा रिवर बैंक वाराणसी सिटी वे शनाक्रोर ठीक की लिवे म्यूसो लाइट अपावे यूनियन कैबिनेट न्यू सिमिकन 2.0 बजेटरी आउटले शनाक्रोर लाख अली ठीक काइली कई नोवीरो इंडिया वे सिमी कंडक्टर डिजाइन अल्या मैन्युफैक्चरिंग को सिस्टम इको सिस्टम सो खोची पुरे दुनी ए आउटी पुरे टपावे सिमिकन 1.0 वे स्कीम है गवर्नमेंट ने इंडिया ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैप ही थोड़े दो नि तेरा वसुजु जाए ता मिस्टर वैष्णु ने पाए मिनिस्टर ने पाए कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम वे बजेटरी आउटले शना क्रोर थे रचु रहा है कई नोवी है डोमेस्टिक मोबाइल फोन प्रोडक्शन सो रे वे अल्या ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हम ही इंडिया वे भी सो खोची पुरे दो नि सो वेटा पाए कैबिनेट ने ओडिशा अल्या झारखंड वी डिस्ट्रिक्ट अदाही इंडियन रेलवे नेटवर्क किलोमीटर कैली रदाई नोवी मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अहार ए आउटिपुरे पॉय नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया पोथे हाँ कचुर वी आत्मनिर्भर भारत रो अप्रूव सुपुए रेलवे मिनिस्ट्री न्यू इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC न्यू बेटा वर्जन वेबसाइट है ट्रेन टिकट बुक सुजु तालाजु अल्या यूजर फ्रेंडली विजा दो न्यू लॉन्च पुरे तपोए IRCTC न्यू बेटा वर्जन ही मेजर इम्प्रूवमेंट अदाय सो वी पुए तपोए रे रखाइसो कैप्चर्स पॉपअप्स फ्लैशिंग ग्राफिक्स मो क्यूको डिस्ट्रैक्टिंग इलिमेंट्स ता है पाला मोजु वे अहाय जेसो आ पैसेंजर्स मैन्यू क्लास वी शि वी ही ब्यूस हाजु तो जुलु वी जु ए असो जेसो आ चेकआउट प्रोसेस था जु ए टिकेट बुक सो जु की स्टेप लोची ता जु अखाय सो आ अदाई जेसो ने जो वेबसाइट ने पैसेंजर में भी डिटेल सेव सो लो आ थेक है टिकेट बुक सो जु ता ला जु है लो ए टपोए दिल्ली वे आइकॉनिक रेड फोर्ट कम्प्लेक्स है ऑगस्ट लाइकों गांव की गोगी व्यू राइचा 80 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन न मोज़ पब्लिक माय पिलो जो है क्यूरेट अपॉय सब जो ऑर्डर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI

आकाश फने इम्फाल इचु चोक्रो हुंदा पोंगो हेफेम कैकोटे माओ मई चो सबु सुथोताय र माओ चो सबु चक्रपी को निक्रोमेट ऑफ सुथोले चिक्रो चिलो काई सई लोपिवे इजोजी को टू कदाले ही शी हेच जोबानो लिपे को थोलो जो को चो कल्या कदाउ ची जी फो ओवोसुलोले ए सोमई पुलोले चोवानो डॉक्टर पुनिनो उचु पेगुचो मप्रामोचोले इचुर इक्रोमेनो इजोको माओला लेनो चक्रलेशे आकाशवाणी इम्फाल इजोको अखाकाई खुफुजेनो प्रबिले उत्तर प्रदेश ले वाराणसी लेखी कसा क्रोर धुमका पुंगौ लव इलिवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट कहाँसो ठुलो कुरो यूनियन कैबिनेट नो एप्रूव सब युटे प्रोजेक्ट ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नो इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमिटी अकुआ को फ्रो को चले नो एप्रूव सोपिए प्रोजेक्ट ले ही नेशनल हाईवे 19A वाराणसी रिंग रोड ऑन हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल कोलेखी किलोमीटर रपदा चोरौ कुबु 6-lane ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर सोलो कुरो लवे ए ही कसा क्रूर थुचा पद्दवा कृपद्दे लवो सोले नुसो लेनो मोबाइल फोन सोप्रालो कुरु दुनो कसा क्रूर थुरा चुरा कहवा कृपुंगो लवो ओवो सोठो कुरु मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हिया कैबिनेट तानो अप्रूव सोपिए हिदो अप्रूव सो कपी ही नुसो पेनो उजिफे ले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब कली मोसोलो कुरु मोचो सोपिए उवु रचा कपरा इंडिपेंडेंस डे चिथुर कुरु ओफा कहीं को कोदनो सोदा ऑफ दलो मोले कशी दुनो दिल्ली ले कुबु रेड फोर्ट हे ही मोसोपेनो मोलो कुचो खुबु टेटो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI तनो मुस्से प्राप्योटे हिदो मुस्से प्राकपी ही मुफुत्सु सवेटो ISA सीनियर ऑफिशियल मई कलिनो पेमनी पे मध्य प्रदेश लेनो करेसो वो इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस सोटोकुचो सोटोपियोटे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स फिजी अबू धाबी हे तकोचो फ्लाइट कराई नही इंदौर हेनो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव नो माता थुबिये लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड बाला भद्रा कल्या देवी सुभद्रा फुख्रुमई दुनो उजिफे उजुताओ कुबु रथ यात्रा ही इजो ओडिशा ले पुरी हेनो सोथुपिये नुसोले उमई पजिनो उबुली लेनो ओरा कोसई पैफता कुचु ही सोपिये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फुख्रुमई नो नुसोलमई जगन्नाथ रथ यात्रा वनो इलोपिये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हे वेसल्स कोलेची कुलो कुरुदुनो कुठुसो ईरान पीले मुदुठो कुचो सोलेटो यूनाइटेड स्टेट्स तन मुसिप्रापिये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हे तेरान नो वेसल्स टारगेट सो कुबु सोको खेलो कुरुदुनो ईरान पीले वेव कहें कुचो स्ट्राइक ही इडो सोटेटो US मिलिट्री तन मुसिप्रापिये मणिपुर चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान नो इजो सेक्रेटरेट हेनो मणिपुरी मुस्लिम काउंसिल तमिल संगम ए गोरखा समाज तय का दियो को फ्रोपिये हेल्थ केयर सर्विस सोमोख्रो पुपिलो कुरु मोसो नो अमाजे अताची का दियो कुबु सोको खे पिलो कुरु स्टाफ मई थोपू पिलो कुरु कल्या ओनाजी सोमई पु पिलो कुरु दुनो को फ्रोपिये सोलो कोस थप्त कोले ओवोसो थोपिले तो वोलो को उमुहे चीफ मिनिस्टर नो कपेपिये मणिपुर लवो अर चुप्रा फेहले इजो उचिर रिवोलो काई बुएटो मैथ डिपार्टमेंट तन मसुप्रापिये मणिपुर नागालैंड मेघालय त्रिपुरा असम मिजोरम बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम ए उत्तराखंड लेही चिथोते काली उचिर रिलेटो मसुप्रापिये अरुणाचल प्रदेश गैंजेटिक वेस्ट बंगाल कलिया ओडिशा लेहिया इजो उचिर मशिशो कुचो वोलो काई बुए सुदुनो मेट डिपार्टमेंट तनो ऑरेंज अलर्ट मुसुप्राप्योटे फीफा वर्ल्ड कप 2026 सी फाइनल मैच ही स्पेन नो अर्जेंटीना अक्वा कुक्रो कवाले इडो चक्रो अमेरिका ले अटलांटा स्टेडियम हेनो कहें कुचो सेमीफाइनल मैच अर्जेंटीना इंग्लैंड नो कुक्रो कवा कुचो ले ही अर्जेंटीना नो करो कहें तिथलो यो इंग्लैंड ही कोरो कली तिथलो बटे हेक्रो क्रोखा
Chachikoni, third place dono France e England no kukru kavale kalya final match hi hekro kro khama kaini Argentina e Spain no kukru kavale. Ijoko hi hise.

0: जब कन्ट्री से कराम कन्ट्री
1: फ्रांस
0: हजी फावदी फ्रांस से सेमी फाइनल लेहुबदी थर्ड प्लेस सानी थौरान तौर फ्रांस न लेहुब मीकोबी मरुक वकनोदी करी वकन फावी
1: नुआईदी फावे पाज
0: लाखदरीबा जुलाई तारीख कुंद सानगदरीबा फाइनल मैच असिद स्पेन अर्जेंटीना यूरोप कोपा अमेरिका की लैबाक अनी तेनगदरीबसे लैबाक अनी करम लैबाक सपोर्ट चतरीबा टूर्नामेंट असिद ख्वाइदगी मरुना पांब प्लेयर से करम प्लेयर
1: किलियन
0: कलेन नंबर पे हजु फावदसु अकोगे हाईएस्ट गोल स्कोर के अकोई लमजेल दे यावरीबा अदुगुंबा प्लेयर मखंगनी फ्रांस दोसला कोइना मरुप लाखदरीबा इन मिसिंग अनी सुम कुनसादा अकोगे पोर्टुगल दा पथंग इडिशन के फिफा वर्ल्ड कप से तौनाबगीदम कप्लीट तौरी हाइरीबा पोर्टुगल दा तौनाबा अकोई थौरांग तौरीबा वर्ल्ड कप असिदा अखोई लैबाक अमोरीबा इंडिया से क्वालिफाई होइबो नंगनी न कनबी
1: नंगिनी दिखले आइदी अंडर टू क्वालिफाई होगी दि दावगा हरि पथंग दरी आइ आदि लैबिन जाय पेरा मे आमजे अदन रु हैंड हेल अपेन दावगा क्वालिफाई होइबो स्पाम होइजो होइजो होइजन
2: सुनंदालैंड मयम दैफम नमरांग कोंदै
0: हान बयन मरु पे खंजनिंग बसे अखोगे फिफा वर्ल्ड कप से हजिक लालिबा जुलाई तारिख कुनसिदा फाइनल मैच सानदर लोशन गगनि हारिबा फिफा वर्ल्ड कप असिदा करम बतिम बो सपोर्ट तो बिबगे मरुना
2: एने सपोर्ट ओ टीम जे जर्मनी ने बु अनमोदि राउंड ऑफ 32 द डिले होरेबा अदो हजिक की आइगो इन स्पेन मोइन तो राइट
0: जर्मन राउंड ऑफ 32 द नो आउट स्टेज सि द लेहोबसि द मरुकी ओखलन द करी ओखलन फावी की
2: मामांग द दी नॉकआउट योग द बसियावे अदुम खितंग बुदि एक्सपेक्ट अवे दुई तार सु राउंड 32 योर पजे अदुम खर हराव आइ तार मोय हान की केनो दु कय गेंग नो तार
0: जर्मन सि ना नो आउट स्टेज द लेहोरे अदुगि मतुंग द करम लेबाक द सपोर्ट
2: अदुम मेज अयेंग कुदिंग गे आइना खनब टीम बुदि अमामाम जिलम ने दु सु आइ जे दुम स्पेन द खर दि चिंग जलाय तार दि याम कन्ना हजिक की मोयना अदुम सपोर्ट औ नब टीम गु अर्जेंटीना गु बले जना अदु सु तौ गि तौ वे दु सु स्पेन ग अर्जेंटीना ग फाइनल जि सान दोइना अमु करम बताऊ दो नो जे मु खंजाना माय तार
0: स्पेन अमा सु अर्जेंटीना से फाइनल मे सानग दोरे करम टीम द कोई सपोर्ट तो गनी हैव तो मति इसा के फिरे ब मति ले पिर मने न कले करम टीम द सपोर्ट तो गनी
2: आई दी स्पेन द तावर
0: आहन बोइना अकोय मरु के मिंग अमा दी ले फम हाबी
3: कक्चिंग मयाय लेकाय आई मिंग न मुनिका कोए
0: अंद की चतरी ब फिफा वर्ल्ड कप से लागलीबा जुलाई तारीख कुंदा अकोय के फाइनल मे सानदुन लोशि लगनी हारीबा वर्ल्ड कप से द हजिक फावदा करम बस टीम बु सपोर्ट तौदुन लाखोगे थंबी
3: आई दी मेसी दा दोम तौरे
0: हजिक फावदा दी अर्जेंटीना की मैचिंग असे यम वान वान नंबगी फिबो ममा अकोय राउंड ऑफ 32 दगी होरा कांदा नरांग की सेमी फाइनल मैच अदु फावदा यम वान नंबगी ममी एमा अदुम उकी हारिबा मिकु बदु दा कोई नम हौरा रोइद्रा नत्रगना मीना थोई की गद्रा हाइब खान बमी कु बदु अदु की मता दाय द करी वखन फावी की
3: खितंग पाखत पदी फावे अदु आई बोन दी कैसी आम दी लुपोई दे दा तु सुम पाम जरु बाय खा
0: आहन बोइना मरु की मिंग अमदि लेफम हाबियो
4: मन जेन रस्तम फतेरा औ लाइकाय
0: या मजे मरु मरु दगे आहन बोइना खंजनिंग बसे हंदक की अखोय की लेबाक अहुम न युम्बु ओइदन पांगथोकलिबा फिफा 2026 वर्ल्ड कप सिदा मरु न ख्वाय दकी पामजबा सपोर्ट टोकी बलेबाक से करम बलेबा
4: शेयर 7 फेन अम ओइना ए पोर्टुगल नि
0: पोर्टुगल सपोर्ट तो वा शेयर 7 से पामजबा अखोय की मणिपुर की फुटबॉल फेन नमोइना पोर्टुगल न अखोय राउंड ऑफ 16 दा स्पेन इमा को द माइथी होब मेको बसि द मरुकी ओखलोन द करी फाबी
4: एंगोन द माइथी बगी नोआय त बसि अतुकी मति याम थिन हार्ड ओय मरम दि टीम सपोर्ट खितंग वाटपा उब माले आइगी मो नते वर्ल्ड गी फार फार बा मैम न सुदुम हाय आइ खक्तना आइ एज ए नुशिर बगी फेलम ख ओइना आइ मंगोन द कदोगी इनसन बगी कैसु लाइते तउ त महा ngon द अतै अतोपा लै स्पेन अंदै दि अर्जेंटीना अंदर इंग्लैंड अटे अटे अतोप कंट्री मैम सिंग सपोर्ट तब शेयर 7 द सपोर्ट तबसे टीम वर्क होना खितंग वार प्राण खाले असोब खराना अखोय राउंड ऑफ 16 द खा ताना लंबेन लेखिदबनी मखा चंगिदबनी
0: हजुकी अखोना फिफा वर्ल्ड कप से लाकदोरीब जुलाई तारीख कुंद स्पेन अर्जेंटीना फाइनल सानदब सेम सारी जुलाई तारीख 19 फ्रांस इंग्लैंड थर्ड प्लेस की अखोय मैच से नोंगयाय मतुंग पुंग अनी मखाइदा सानानबगीदमक थोरांग तौरी हारिबा अखोगी थर्ड प्लेस की मैच अमसुंग फाइनल मैच से करम करम बलैबाक तो सपोर्ट तौ
4: नेमाल गी फेल दिना ते तौ तो वई स्पेन जे पाम जे आम फजब पास पासिंग अंदै दी

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजी अमुतासी पुरी ओरिशाद रथ जत्रा की कांग सिंब की मिट नौब पादम रेडियो रिपोर्ट तारी
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं रथ यात्रा पर रेडियो रिपोर्ट।
2: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा।

शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्नवेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहाँ उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ, लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ तालध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

0: एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु बरसात लगातार को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथयात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे।

0: अंजलि जी स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
1: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
0: धन्यवाद अंजलि जी।
2: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: हौजिक्तापी क्रे नसी पुरी द रथ जत्रागी कांग सिंबगी मिटन उप पाउदम रेडियो रिपोर्ट ताबिक्रे थौरम संदोक्तुन ताहनजरिबसे आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगिनी हौजिक अमुक ताबिरसी चौथोकसे इमा मणिपुर तरानिपान सुब तांककी अहानब सरुकता कलाना कलागीदमक थिएटरगी गुरु रतन थियाम अयिब माखोमनी मोंगसाबा थौरम लानथोपिरिबसिंगदी कौनजेंगबम निर्मला सनुमदी कौनसम अजीत थौरम पुथोपा वायराकपम सर्वजीतनी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जैसे सुबह की पहली धूप, बारिश की भीगी हुई खुशबू या किसी पुरानी तस्वीर को देखते ही चेहरे पर आ जाने वाली मुस्कुराहट। पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की भी तो यही खास बात है कि ये वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर कोई नई याद, कोई नया एहसास साथ ले आते हैं। आज की इस महफिल में बातें होंगी इश्क की, यादों की, मोहब्बत की, इंतजार की, मुलाकातों की, जो जिंदगी की किताब में हमेशा ताजा रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सदाबहार नगमों का एक खूबसूरत सफर इस बेहतरीन से गीत के साथ।

अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते शब्दों से ज्यादा खामोशियों में समझ आते हैं? पुराने गीत भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कम अल्फाज में दिल की पूरी बात कह जाते हैं, और शायद इसी वजह से बरसों बाद भी ये धुनें हमारी यादों का हिस्सा बनी रहती हैं। और जब कभी हम इन धुनों को सुनते हैं तो माजी के उन्हीं किस्सों में डूब जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो मोहब्बत की उसी सादगी और उसी खूबसूरती को अपने सुरों में समेटे हुए हैं।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कभी-कभी कोई धुन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं पर ठहर गया हो। एक पुरानी सड़क, एक चाय की प्याली और रेडियो की हल्की सी आवाज और दिल में बसती हुई कोई मीठी सी याद।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये हर दौर में अपने से लगते हैं, चाहे माँ बाप की पसंद हो या आज की पीढ़ी की नई खोज। अच्छी धुन और अच्छे अल्फाज कभी अपनी चमक नहीं खोते। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश की तरफ।

दोस्तों, रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनमें यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। कुछ लोग साथ देते हैं और तो कुछ सिर्फ यादों में रहते हैं, लेकिन एक अच्छा गीत दोनों के बीच की दूरी को पल भर में मिटा देता है। और इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत। और इसी गीत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और अब आइए सुनते सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187। निफ्टी ड्रॉप्स 6 पॉइंट्स। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन नेगेटिव जोन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज सपाट कारोबार के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 77,187 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 6 अंक नीचे आया। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil, over to you for the first story.
1: Yeah. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज बिना किसी बड़े बदलाव के कारोबार किया. सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई. इससे पहले बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हुआ. हालांकि बाद के समय में दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी. वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एशियाई बाजारों से मिले असंतोषजनक संकेतों के बीच निवेशकों का सतर्क रुख देखा गया.
0: Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The Sensex added just 1 point to close at 77,187. The Nifty dipped 6 points to settle at 24,073. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 dropped 0.4% and small-cap 100 index fell by 0.1%. Earlier markets opened on a positive note and traded with modest gains during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half.

0: अब वहां पर ऑयल प्राइसेस अभी कंट्रोल में आ गए थे, फिर अचानक दोबारा से बढ़ गए, और हम देख रहे हैं कि भारत में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, तो और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी रिलेटेड है। अभी हमारे पास कुछ हेडरूम है, कुछ कंफर्ट है, और हम इसको और अपने को मजबूत बना सकते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा चाइना के ऊपर। अभी हाल में चाइना के इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं, दो या तीन दिन पहले आए हैं नंबर्स, और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने, जबकि वहां पर देखिए गवर्नमेंट जो है, डेटा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो इतना आसान नहीं है उस पर भरोसा करना, और उसके बावजूद भी चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ 4.25% अपना जीडीपी ग्रोथ दिखाया, जबकि उनका लक्ष्य 5% था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में जब 4% 4% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और यदि भारत में हम 4.5-6% के साथ की उम्मीद रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं गिवन द एनवायरमेंट दैट वी आर
1: गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड।
2: एक चीज अगर क्या हम जोड़ मतलब ये समझ सकते हैं कि निवेशकों का जो भरोसा है ऐसे में वो अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना अब से ये जो संघर्ष इस साल हम जो देख रहे हैं इसके पहले जैसे बना हुआ था, या कुछ बदलाव आया है?
0: बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जहां भरोसे का सवाल है तो भारतीय निवेशक, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही पैसा लगा रहे हैं, उनका भरोसा बना हुआ है और वो टिके हुए हैं। आप ये देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो काफी सेलिंग कर रहे हैं, और उसके सामने वो कोई बहुत बॉयंट मूड नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत तेजी में है या बहुत अग्रेसिव है। अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा को देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए नेट इन्फ्लोज अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आ रहा है, और ये एक स्टेबल नंबर है पिछले 6 महीनों से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेडिली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा यूफोरिया में नहीं कर रहे और पैनिक में वो बेच भी नहीं रहे।
1: पर जब हम भरोसे की बात करें, जैसे भी आपने पुनीत कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं भरोसा है उन्हें, would you say that a lot of that trust that we're talking about is also because of the fact that, like we just discussed right now, most of the happening, what the way the markets are behaving or reacting is because of geopolitical situations. When you look at the numbers in India, when you look at the situation, the way India is progressing, things are pretty steady and going in a very positive direction, and that's what probably is earning the trust of the investors, retail investors.
0: Absolutely. In fact, the way we have managed this difficult economic condition, I think, is quite commendable. The policies that the government followed to stabilize the economy, to keep inflation under control, relatively speaking. Yeah. I mean, inflation could have shot up like anything, like in many other Asian countries. So my guess is that people take comfort from that. And the truth is that the liquidity conditions, the economic conditions continue to be quite benign in India. There was a lot of apprehension that we will see, you know, a lot of pressure on consumption, a lot of pressure on inflation front. Fortunately, we haven't seen that.
1: Yeah.
2: पुनीत, क्या अभी आपको लगता है कि जो निवेशक हैं, घरेलू निवेशकों की हम बात करते हैं, तो अपेक्षाकृत अब वो सुरक्षित और बड़ी कंपनियों का रुख करने लगे हैं, खासतौर पर निवेश के संबंध में?
0: नहीं, देखिए निखिल, बड़ी मजेदार बात है ये कि पिछले दिनों यदि हम म्यूचुअल फंड फ्लोस की तरफ नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें इनफ्लोस अब कम है, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उन स्कीम्स में अब ज्यादा फंड फ्लोज आ रहे हैं,
2: लेकिन उसमें भी गिरावट आ रही है।
0: उसमें गिरावट देखिए उतनी नहीं है, और जब इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और सस्टेन ढंग से लगाते हैं तो एक्चुअली वो सोफिस्टिकेशन का एक संकेत होता है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अब मिड कैप्स में स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो शुरुआती निवेशक होते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो कंफर्ट ढूंढते हैं लार्ज कैप्स में, और इसलिए हम देखेंगे, अगर आप देखें तो इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं आता है लार्ज कैप, जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी निवेश पिछले दिनों हुआ है।
1: सो लाइक यू सेड, इफ द रिटेल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इज एक्चुअली साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ आवर रिटेल इन्वेस्टर्स। यू नो दैट, लाइक यू सेइंग, इन द बिगनिंग एवरीबॉडी वुड लुक फॉर एट लार्ज कैप्स बिकॉज यू नो दैट इज वेयर यू गेट अश्योर्ड रिटर्न्स, बट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दैट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी,
0: दैट शोज मैच्योरिटी, दैट शोज कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैव इन लार्ज, यू नो, नंबर ऑफ
1: इन द इंडियन स्टोरी एज वेल। Right, let's move on to the next story. Tech Mahindra today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June this year. The company's revenue increased by 17.7% on an annual basis to 15,712 crore rupees. On a sequential basis, the company's revenue grew by over 4.2%. The company's net profit rose by around 8.2%. to 1,465 crore rupees on a quarterly basis.
2: एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 6.4%, जापान का निक्केई 2.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.8% से ज्यादा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम लगभग 0.4% गिरा था, जबकि ताइवान का ताइएक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ. इसके उलट हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% से ज्यादा बढ़ा था. इस बीच दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3 साल से ज्यादा समय में आज पहली बार अपनी मुख्य ब्याज दर को बढ़ाया है. मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद बैंक ऑफ कोरिया ने इस दर को 2.5% से बढ़ाकर 2.75% कर दिया, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से बढ़ रही महंगाई से निपटने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना है. इस साल मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा रही, जो बैंक के 2% के लक्ष्य से अधिक है. पुनीत, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह का हमने ये बदलाव देखा, 3 साल से अधिक समय के बाद बदलाव आया, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका और इंडिया और चाइना के आंकड़ों का भी यहां पे ध्यान हमें रखना जरूरी है. तो इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा संकेत आने वाले समय में मिलेगा हमें?
0: देखिए, कोरिया का जो शेयर बाजार रहा है पिछले 2 वर्षों में, वो बहुत ही चौंकाने वाला बाजार रहा है. पिछले वर्ष करीब करीब 2.5 गुना वहां पर इंडेक्स में तेजी आई और इस वर्ष ऑलरेडी करीब 1.5 गुना तेजी आ चुकी थी. तो कोरिया का बाजार में एक अद्भुत, मैं कहूंगा, तेजी रही. और उसका खास कारण यह रहा कि वहां पर जो चिप, मेमोरी चिप बनाने के जो स्टॉक्स हैं, उसकी एक दो कंपनी है, बड़ी कंपनी, और वो उनका वेटेज बहुत ज्यादा था और उसमें बहुत ज्यादा निवेश हुआ और इसीलिए वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत है. आज 6.5% आपने बताया कि इंडेक्स गिरा, थोड़े दिन पहले 7% बढ़ गया था, उससे पहले वो एक दिन 10% गिर के वहां पर सर्किट लग गया. तो इतना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है. ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मार्केट है, लेकिन नैरो मार्केट है. उसके अपेक्षा में हम देखें तो जो बाकी जो बाजार हैं वो थोड़े डाइवर्सिफाइड रहते हैं, पर फिर भी उसका असर भारतीय बाजारों में पड़ता है. क्योंकि जब हम इमर्जिंग मार्केट्स कंपैरिजन करते हैं तो अगर कोरिया का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों से आता है. एफआईआईज पैसा निकालकर वो कोरिया में या ताइवान में या जापान में इन्वेस्ट करते हैं. मेरा खुद अपना अनुमान है कि जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो एशियाई ये बाजार है, कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, हमने इनकी बात करी, ये जैसे जैसे बाजारों में गिरावट आएगी, वहां पर कॉन्फिडेंस कम होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो हम वो पैसा देखेंगे कि भारत में आएगा. तो मैं उन बाजारों को बहुत ध्यान से देखता हूं, क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड है उसका रिवर्स ट्रेंड एक्चुअली भारतीय बाजारों में हम देखने को मिलता है हमें. तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर अभी वॉलेटाइल है और मुझे लगता है कि कमजोरी रही.
2: लेकिन जिस तरह से ब्याज दर बढ़ाने की बात है, जहां तक अगर थोड़ी सी बढ़ती हो तो उसका असर पड़ता है खासतौर पर पूंजी जुटाने के लिए,
0: और वो तो बहुत नेगेटिव है. अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, जैसे कोरिया में उन्होंने बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने, तो साफ एक संकेत है कि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन लाना चाहते हैं. वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एसेट प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट कम कर, ग्रोथ कम करना चाहती है. तो हमारे लिए बेहतर है और डेफिनेटली उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा.
1: पुनीत, लाइक यू सेड, यू नो, इंडेक्सेस लाइक द साउथ कोरियन कॉस्पी एंड अदर, वेयर if we talk about South Korean KOSPI, the weightage of certain companies which are associated with chip manufacturing, you know, that very big percentage, or very, the weightage is very big. So when you compare it to Indian, you know, indices, whether it's Sensex, do you think it's actually a good thing that, you know, indices like Sensex and NSE, they are not completely, you know, being dominated by a certain sector or by a certain, you know, kind of market, so to speak?
0: Anubha, I think this is one of the strongest points which will really help Indian markets raise capital in the long term. Huh. We are a very, very diversified economy. It's not, we are not, KOSPI, for instance, has weightage of 55% from just 2 companies.
1: Yes.
0: Only 2 companies contribute 55% to the index weightage.
1: Yeah.
0: So what kind of money would one invest in that economy?
1: Yeah.
0: Because you are concentrated investment only in 2 companies. In India, we have more than 7,000 listed companies. Our indices are very strong. Even within the indices, you will see very wide diversification of sectors. So you will have banking, you will have healthcare, you will have telecom, you know, all kinds of sectors are there, and there are substantially large companies. So I think in long term foreign investors or all kinds of investors will find much more comfort investing in India. They'll have many more choices to invest in other markets which are narrow markets. They may make money in the short term, no?
1: Yes.
0: So they try to make hay in the last couple of years.
1: Yeah.
0: But I think in the longer term they will definitely come to India. And what we saw was last 2 years they pulled money out of India, they put it in those momentum markets,
1: yeah.
0: But eventually for the long term growth they will have practically no choice other than India to invest in.
1: And the next news from Nikhil.
2: जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश के वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स में सुधार हुआ है. ये सूचकांक मार्च 2025 में 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 तक पहुंच गया है. बैंक के

0: पर यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने और लोगों को वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में लगातार प्रगति कर रहा है। इससे पता चलता है कि देश के नागरिक अब बैंक खाता रखने के साथ साथ डिजिटल आधारभूत ढांचे, ऋण और बीमा उत्पादों का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के 97 संकेतकों को परखता है और 3 मुख्य पैमानों पर देश की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। हालिया बढ़ोतरी उपयोग और गुणवत्ता में बड़े सुधार को दिखाती है। बैंक ने कहा है कि ये सुधार मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के सशक्त होने का संकेत है। इनमें उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या की हिस्सेदारी 35%, इस्तेमाल करने की 45% और गुणवत्ता की 20% शामिल है। ये सूचकांक पहली बार अगस्त 2021 में मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया था और इसे हर साल उपलब्ध कराया जाता है। तो पुनीत जी, जिस तरह से आंकड़ों की बात है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, सुधार हमें नजर आ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक भी ये बात कह रहा है, तो लोगों को निवेश की दृष्टि से अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूती देने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसमें उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जिससे देश की प्रगति भी हो रही है।
1: निखिल, देखिए पिछले 10-12 वर्षों से यदि आप सरकार का पूरा प्रोग्राम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक सेंट्रल पिलर रहा है। हम डिजिटाइजेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें जनता को, तो उसका जो आधार है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में, यानी जो प्रधानमंत्री ने शुरुआती अपने बिल्कुल जब उनकी टर्म शुरू हुई थी तभी उन्होंने कहा था जैम, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। और अगर आप देखें तो सारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो उसका एक सेंट्रल सेंटरपीस है। और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे गाँव में बहुत दूर दराज जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल एरियाज थे वहां भी चाहे और सुविधाएं पहुंचे ना पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो अपने मोबाइल से अपना काम कर पाते हैं, जो वर्कर्स इमिग्रेंट्स हैं काम कर पाते हैं, वो सैलरी घर भेज पाते हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत जैसे देश में जहां पर बहुत रूरल पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अगर आप वहां ब्रांच बैंकिंग करना चाहेंगे या वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग करना चाहेंगे बहुत मुश्किल थी, पॉसिबल ही नहीं थी। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन अ रेवोल्यूशन और ये भारत का जो मॉडल रहा है, आप सब हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है जी, एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू फॉलो।
0: इससे स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: नहीं, बहुत बड़ी भूमिका। देखिए ये बात तो सही है कि जो स्टार्टअप्स ने जिस प्रकार से इसको फैलाया है पूरे देश में, आप एप्स की बात करें, फिनटेक कंपनीज की बात करें, आप पेमेंट गेटवेज की बात करें, यूपीआई की बात करें, तो इसको जो जो एक मैं कहूंगा एक विजन थी प्राइम मिनिस्टर की और एक विजन थी सरकार की कि लोगों से जोड़ना, वो सरकारी तंत्र अपने आप नहीं कर सकता था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था और उसको पूरा निभाया है प्राइवेट सेक्टर ने। पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स की कंपनीज हैं, अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें
0: जी,
1: मतलब इसके ऊपर तो आप समझिए कि हम कितना ही लंबी बात कर सकते हैं और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, हम देखते हैं कि कितना बड़ा इसका असर आम आदमी के जीवन पर पड़ा है।
2: पुनीत, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल inclusion index and when we're talking about financial inclusion, financial literacy, how big a role and how crucial is it when, you know, we talk about we have a vision, the Prime Minister has a vision of Viksit Bharat by 2047, how crucial is the role of this financial inclusion and the improved financial literacy in that, in achieving that?
1: So Anubha, what we need to realize is that financial inclusion is the only way that we can lift people out of poverty. See, the financial inclusion wasn't really meant to, I mean, it of course it has benefited everybody,
2: yeah,
1: people in the upper strata of society with higher incomes, with more prosperity, but financial inclusion is a crucial differentiator for people at the bottom of the pyramid.
2: Yes.
1: It is they who have been able to utilize their money, save their money, invest their money and benefit from financial inclusion. The
2: right.
1: whole focus of financial inclusion has been to target people who have been excluded
2: yes.
1: from the formal financial system, and I think that is where the greatest achievement for these efforts has been, and the constant improvement in financial inclusion index showing that more and more people are getting better services, they are utilizing it more. If you look at the composition of index
2: yes.
1: it's very interesting. It says quality, utilization accessibility. So these are the three main features of financial inclusion.
2: Right.
1: I think it's made a huge difference to India's growth.
2: Let's move on to the next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM, and other regional associations in Brussels, Belgium. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed how the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs, and people.
0: सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है. बदली हुई दरों के तहत डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹15.50 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि एटीएफ के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर किया गया है. वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर ₹2.50 प्रति लीटर किया गया है. बदली हुई दरें आज से लागू हो गई हैं. हालांकि घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
2: पुनीत, हियर आई वांट टू टॉक बिकॉज़ लाइक निखिल जस्ट रेड दैट दिस इज एक्चुअली अ फोर्टनाइटली रिव्यू ऑफ फ्यूल एक्सपोर्ट टैक्सेस. सो व्हाट इज फॉर द इफ वी हैव टू यू नो फॉर लिसनर्स वी हैव टू टेल आवर लिसनर्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ दिस फोर्टनाइटली रिव्यू एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकॉनमी.
1: सो अनुभव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज बिकॉज इट टेल्स यू नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री बट एक्चुअली टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग विजावी पेट्रोल एंड डीजल एंड एटीएफ डिमांड वर्ल्ड वाइड. व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज for petrol, refined petroleum products. See, we import crude oil, but we are also one of the world's largest exporters of refined products now. And government calibrates these taxes depending on the demand for these products. So if I look at this news, it tells me that government is expecting more exports from India, more pressure for exports from India for ATF and diesel. And therefore, we have raised custom duties. We want to retain some products within the country because there must be demand internationally. So mostly these figures of these taxes are revised based on international demand and also underlines the fact that India has now become a major exporter of refined products.
2: And would you also say that, you know, as and when, if supposing whatever, whether these export duties increased or decreased, it's also to do with whatever is happening on the international front? Because if the prices go up, then obviously we also import. And so that's also to make sure that the domestic supplies remain intact and domestic domestic users get priority over exports.
1: So to some extent, yes, we are trying to protect and you know, build our own reserves. But the truth is that India, while it imports a lot of crude oil, we are very comfortable vis-a-vis the refining capacities. In fact, we are net exporters of refined products. So that is not that much of a concern for us. But it, of course, puts the taxes are in context of what is the demand internationally.
2: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices were marginally up today as escalating Iran and US tensions raised worries about a prolonged West Asia conflict. Brent crude was trading 0.2% up at $85.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.5% up at $80.02 per barrel when reports last came in. And let's take have a look at the gold and silver prices as well. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% down at 1,41,870 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.9% down at 2,19,030 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.4% गिरकर 1,41,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% नीचे आकर 2,18,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. पुनीत, हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, कई सारे विषयों को इस कार्यक्रम में लिया. आपके अनुसार आज के समय में निवेशकों को किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए वो, मतलब एक अच्छा निवेश कर सकें?
1: देखिए निखिल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निवेशक हैं उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना चाहिए. शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट हो करके, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, उसमें लुभा करके उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. दूसरा, मैं ये कहूँगा कि भारत की जो स्टोरी है उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए बिकॉज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें अगर जो लंबे समय तक निवेश करेंगे उनके लिए रिटर्न अच्छी रहेंगी. तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, आपको हर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और खास तौर से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
0: यानी कि हर एक बात पर छोटी हो या बड़ी हो उस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल एब्सोल्युटली, और उस रिसर्च करके, खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है, किसी की कहे सुनी बातों पर निवेश ना करें, वो सबसे बड़ा एक दुश्मन होता है हमारे पोर्टफोलियो का।
0: बिल्कुल उदित जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187, निफ्टी ड्रॉप्स 6 पॉइंट्स, मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन नेगेटिव जोन, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
0: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और BSF जवानों से बातचीत करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पो राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पूरी।
0: कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen power trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a three-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagach border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. He will also inaugurate and lay the foundation stone for various development projects related to the BSF. In the afternoon, he will chair a meeting on border-related issues in West Bengal. Sources added that the Home Minister will also review the implementation of the three new criminal laws in the state. Prime Minister Narendra Modi yesterday held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father of Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency NTA has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicentre of the festival is the holy city of Puri in Odisha, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. In men's cricket, chasing a target of 234 runs set by India, England were 131 for 5 in 28 overs in second one-day international of three-match series at Sophia Gardens, Cardiff, and reports last came in. The Goa government has tightened regulations governing casino operations by prohibiting entry of persons below 21 years of age into casino game areas. The notification also introduces stricter provisions regarding the payment of license fee for offshore casino vessels. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अभिमान, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कहते हैं कि रात जब सब सो जाते हैं तो धीरे धीरे रात अपनी चादर को फैलाती है और तब कहीं दिल से हल्की सी आह खामोशी में सुनाई देती है। दिन भर की हंसी के पीछे छुपे वो अनकहे सवाल धीरे धीरे आंखों में उतर आते हैं और नींद से पहले एक कहानी बन जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब यादें भी दस्तक देती हैं, कुछ मुस्कुराती हुई कुछ चुपचाप रुला जाती हैं। वो बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो एहसास जो शब्दों में ढल नहीं पाए, रात उन्हें अपने आंचल में लेकर चुपचाप सहला जाती है। जब सब सो जाते हैं तब हम भी थोड़े सच हो जाते हैं, न कोई दिखावा न कोई शोर, बस दिल और उसकी आवाज। कभी खुद से सवाल करते हैं और कभी खुद को ही जवाब भी देते हैं और इसी खामोशी में थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं। रात सिखाती है हमें कि तन्हाई दुश्मन नहीं होती, कभी कभी यही तन्हाई हमारी सबसे सच्ची सबसे अच्छी दोस्त होती है। और अगला गीत फिल्म कामचोर से।

जब शहर की धड़कन धीमी पड़ जाती है और खिड़कियों की रोशनी एक एक करके बुझती है, तब कहीं भीतर एक छोटी सी दुनिया जागती है। वो दुनिया जहां कोई आवाज ऊंची नहीं होती, बस एहसास धीरे धीरे करके दिल की सतह पर उतरते चले जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब वक्त भी जैसे ठहर जाता है। घड़ी की टिक टिक किसी अधूरी बात का जवाब लगती है। कभी कोई चेहरा याद आता है जो अब पास नहीं है, पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा साथ है। अभी रात में साथ चलती है कुछ सपने जो दिन में खो गए थे। रात उन्हें फिर से याद दिलाती है, फिर से थाम लेती है और कहती है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस सन्नाटे में हम अपने डर को भी सुन लेते हैं और हौसले भी, जो दिन की भीड़ में कहीं दब गए थे। जब सब सो जाते हैं तो दिल धीरे से कहता है, तुम अब अधूरे नहीं हो। और शायद यही वजह है कि हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की।

वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है रुदाली, आवाज है आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरी नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कभी उतर नहीं पाता। कागज खाली नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिख दिया जाता है वो शायद उतना खास नहीं होता जितना जो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाए, क्योंकि हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। कुछ एहसास बीच में रुककर ही याद बन जाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है खामोशी, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात जब सब सो जाते हैं तो रात शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे हर चीज को अपनी जगह पे रख देती है। बिखरे हुए दिन को समेटती है चुपचाप, थके हुए लम्हों को तकिए के नीचे सुला देती है। खिड़की से आती हवा कोई किस्सा नहीं सुनाती, बस पर्दों को हल्का सा हिलाकर याद दिला देती है सब ठीक है। जब सब सो जाते हैं तब कोई सवाल नहीं होता, न जवाबों की जल्दी, न किसी को समझाने की कोशिश, बस एक ठहराव होता है, जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए खुद को पॉज कर लिया हो। इस सन्नाटे में ना कोई अधूरी बात चुभती है, ना कोई पुरानी याद खींचती है, बस एक हल्की सी राहत होती है, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, आज के लिए इतना काफी। जब हम सो जाते हैं तब रात सिखाती है कि हर चीज को महसूस करना जरूरी नहीं, कुछ लम्हों को बस यूं ही बीत जाने देना भी सुकून देता है। अगला गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

अब वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंकपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है पाकीज़ा, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, साथ हूं मैं जयती। एक हल्की सी जगह, भीतर भीतर कहीं एक जगह ऐसी भी होती है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, ना कोई सवाल, न शब्दों की भीड़, ना किसी को समझाने की कोशिश, बस एक सादा सा सुकून जो बिना वजह ठहरा रहता है। दिन भर की भागती सोच जब थक कर लौटती है तो उसी जगह धीरे से बैठ जाती है। ना कोई शिकायत होती है वहां, ना कोई अधूरी चाह, जैसे सब कुछ वैसा ही ठीक हो जैसा होना चाहिए। कभी कभी ये महसूस होता है कि हम खुद से दूर नहीं थे, बस रास्ता थोड़ा धुंधला था, और जब वो साफ होता है तो पता चलता है सुकून कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चुपचाप इंतजार कर रहा था। कोई शोर नहीं करता, ना ही हमें पुकारता, बस एक हल्की सी जगह बनाकर हमारे लौट आने का धैर्य से इंतजार करता। अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

मैंने मन के सबसे भीतरी सलवट में एक जगह बचा कर रखी है, जहां कोई दस्तक नहीं पहुंचती, ना किसी रिश्ते का अधिकार। वहां कुछ अधूरी पुकारें हैं जो होठों तक आकर लौट गई थी। कुछ पन्ने हैं जिन पर नाम तो लिखे गए पर भेजे कभी नहीं गए। वहां एक कोना ऐसा भी है जहां मैं बैठी रहती हूं, अपने कई रूपों के साथ, कभी प्रश्न बनकर कभी उत्तर से दूर भटकती हुई। कुछ दृश्य हैं जो आंखों से उतर तो गए पर भीतर की मिट्टी में अब भी जड़ें फैलाए हुए हैं। मैंने उन्हें छिपाया नहीं, बस संसार की भीड़ से बचाया है। कुछ बातें नदी की तरह होती हैं, बहती तो भीतर हैं, पर उनका मार्ग किसी मानचित्र में दर्ज नहीं मिलता। और अगला गीत अब लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

किसी सांझ की भीगी देहरी पर मैंने कुछ अभिलाषाएं रख छोड़ी थी, न मांगी थी किसी भाग्य विधाता से, न हथेलियों की रेखाओं में जोड़ी थी। वे बस मेरी पलकों की तह में धीरे धीरे अंकुरित होती रही, जैसे निर्जन वन में कोई बेल बिना दर्शक के बढ़ती रही। फिर जीवन ने अपने निर्णय लिखे, मैंने भी बिना वाद विवाद पढ़ लिए। कुछ मोड़ों पर मुस्कानों के दीप जले, कुछ मोड़ों पर अपने ही स्वर गढ़ लिए गए। पर एक कोना ऐसा भी बचा जहां कोई ऋतु नहीं पहुंची, वहां आज भी कुछ आकांक्षाएं निष्कर्ष तक लौटती हैं। वे हार नहीं थी, बस नियति की मोहर उन्हें न मिल सकी। वे भूल नहीं थी, बस उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं रही। कितनी ही कथाएं लिखी जाती हैं विजयों के स्वर्णिम पृष्ठों पर, किंतु जो मन के अंतराल में ठहरे वे कहां उतरती हैं इतिहासों पर। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मीना होंगी आपके साथ। अभी छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 2 रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो मुझे दीजिए अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन

0: ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार, एहसास और खूबसूरत धुनों से सजी इस महफिल में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा गीतों का ऐसा नजराना जो आपकी शाम को यादगार बना देगा। तो मुस्कुराइए, दिल को सुकून दीजिए और हमारे साथ इस संगीत भरे सफर का आनंद लीजिए।

दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। कभी किसी की मुस्कान में बस जाता है तो कभी किसी की खामोशी में

ना घर बना लेता है। जब दिल सचमुच किसी को अपना मान लेता है ना, तो हर दुआ में वही नाम शामिल हो जाता है और हर ख्वाब उसी की तस्वीर से सजने लगता है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत इसी एहसास के अनुसार।

दोस्तों, अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई अनकही बात है, कोई खूबसूरत एहसास है ना, तो आज उसे महसूस कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार दुनिया से नहीं डरता और वो बस अपने दिल की सुनता है।

जानते हैं दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां हम कहते हैं नहीं, और दिल मुस्कुराकर कहता है यही तो प्यार है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जो मोहब्बत के इसी मासूम इकरार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है।

जब किसी अपने का साथ मिल जाता है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपनी सबसे खूबसूरत नेमत दे दी हो। फिर दिल यही कह उठता है और किसी चीज की तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि जिसे चाहा था वही मिल गया। इन्हीं जज्बातों को सुरों में सजता हुआ गीत लीजिए पेश है।

0: बाकी के नगमे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, मोहब्बत में सबसे प्यारी चीज होती है अपनेपन की एक आवाज। कभी किसी का नाम लेकर पुकारना, कभी किसी की आहट पहचान लेना, तो कभी बिना कुछ कहे दिल का हाल समझ लेना। प्यार में दूरियां उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी खामोशी देती है। कई बार दिल बस इतना चाहता है कि कोई अपना एक बार पुकार ले और सारी शिकायतें, सारी दूरियां पल भर में मिट जाए। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा।

जब नजरें झुकती हैं ना तो अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और शायद वहीं से शुरू होती है एक खामोश लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी। इन्हीं दिलकश एहसासों को सुरों में पिरोता हुआ पेश है अगला नगमा।

दोस्तों, प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार शायद यही है कि किसी से कहा जाए, तुम्हारे होने से मेरी दुनिया मुकम्मल है और तुम्हारे सिवा कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। तो आइए इसी बे इंतहा मोहब्बत के एहसास को सुरों में महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा

0: कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पो राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ब्राजील सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के कार्यालय ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया है। ब्राजील ने कहा है कि वे जवाबी शुल्क और अन्य व्यापारिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी। कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: It says Akashwani, the news read by Harpreet Kaur. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins a select group of countries that have operational hydrogen power.

दोस्तों जानते हैं, रंग तो एक दिन ढल जाएगा, चेहरे की चमक भी कम हो जाएगी, मगर इंसान का किरदार, उसकी सादगी, उसकी मोहब्बत और उसका बर्ताव, वही हमेशा याद रहता है। हुस्न पर इतराने वाले बहुत मिल जाते हैं।

किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

जिंदगी की राहें चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सफर साथ हो ना तो हर सफर आसान लगता है। मंजिल से ज्यादा उसके साथ चलने का एहसास बहुत खूबसूरत लगता है। दुनिया की दौलत, शोहरत और रंगीनियां भी उस सुकून के आगे फीकी है जो हम सफर के साथ होने से मिलता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, जिंदगी हर रोज एक सी नहीं रहती। कभी खुशियों के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तिहानों की आंधियां चलती है। ऐसे में जो हाथ नहीं छोड़ते हैं ना, जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ना, वही असली हम सफर कहलाता है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हम मोहब्बत के इसी खूबसूरत वादे को अपने सुरों में पिरोता है।

दोस्तों कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं ना तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं रहती। एक की धड़कन सुर बन जाती है तो दूसरे का एहसास गीत बन जाता है। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उनमें कोई आगे नहीं चलता और कोई पीछे नहीं रहता। दोनों मिलकर जिंदगी की एक प्यारी सी धुन रचते हैं। जब सुर और गीत साथ हों तभी संगीत मुकम्मल होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार और भरोसा मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत किसी को रोकती नहीं है, बस इतना कहती है कि चाहे जितनी दूर चले जाओ, दिल से दूर नहीं जा पाओगे। कुछ रिश्तों की डोर ऐसी होती है जो नजरों से ओझल होकर भी टूटती नहीं है। कदम भले ही दूसरी राह पकड़ ले, लेकिन यादें हमेशा उसी मोड़ पर इंतजार करती रहती है। और जब किसी की मोहब्बत सच्ची हो तो उसे यकीन होता है कि लौटकर आने का रास्ता दिल ही दिखाएगा। इसी खूबसूरत एहसास को बेहद खूबसूरत अंदाज में गाया है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

0: उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राजील ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी। कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। उधर कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. Ahead of the monsoon session of Parliament beginning on 20th of July, the BJP-led NDA is set to finalise its floor strategy at a meeting of senior alliance

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी कभी भी खाली हाथ इंतजार नहीं करवाती है। हर ठहराव के पीछे एक सीख होती है, हर देरी के पीछे एक बेहतर मंजिल छिपी होती है। इसलिए अगर आज रास्ते सुनसान है ना, तो घबराइए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं है, चाहे साथ कोई हो या ना हो।

दोस्तों, बहार सिर्फ मौसम में नहीं आती, बहार तो रिश्तों में भी आती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को